आपे पांडे साचियां ने आपे पूरन दे, इक नी दुध समाई गया, इक चुले रैन चढ़े।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अरवरण जात अरपात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कहे जाय होट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिजय त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कह त सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत सेवक का भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु श्री तय अगणत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं कौ तद का सेवक भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुरु ढाक लिया मोह पापी पड़दा ढाकण हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद कह नानक दास ताक बलिहारी मेरा नाम हर निमका चिंत भवन मन भरयो हमारा नाम बिना कैसे उतर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास गुर रामदास राख हो शरणाई सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाई दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਨ ਜਨ ਕਾ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ।

इहो जनम तुम्हारे लिखे कर अवदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे मादा इहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रवदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीज बचनी तोर मोर मन मान जन का पूर्ण दीजा।

ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। तुद आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो ना सब तेरी वड्याई।

जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पाला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर।

तब तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े व सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खड कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सब नीति आया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर विख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकजो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहा नाहां जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा किता न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधन जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे
की राखह शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरिन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा रख लियो मैं रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनाया देव दैत जशन उपजाया आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कटकट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन की सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने जब दुखर्ख कर करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जीते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद सांब ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਧ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਉ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਜੰਭਵ। ਅਵਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਿਓ ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠੋ ਤੁਤ ਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਕਾਤਾ। ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ। ਰਸ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਵਾਰ ਜਿੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੀ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇਰਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾ।

दुष्ट दोख तेल हो बचाई सवैया, पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहार द्वार, बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के

उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से, पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र। सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र,

लाग वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैं ना जोग की तो मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयो तरस पया मेहरामत हो सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे आ तरस पया मेहरामत हो सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कुछ कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे काहन मानक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसया से पश परेत सुर नर पये रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे सत्र अनेक चलावत काव तो तन एक न लागन पावे रखत है अपनो कर दे कर पाप संभूह न भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे और की बात कहाँ कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोही है

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसिया। गुरु कै जन्म मरण दुख, ओ सिफत खस।

जिस पास बैठिया सोही सबनांदा सज्जन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सतनाम श्री वा

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख पवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक।

ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहल की लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारि गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सोचन दाव गवह

कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाव सुखसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण ते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत।

0: महला पहला कढ़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सृजन जाल नानक मूसे ज्ञान विहुणी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वाइन चले नचन गुर पैर हलाने फेरे से उड़ुड़ावा चाटे पाए वे खैलो कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो जिनका सचनाम जाका किया सकल जहान

0: कार ओए जाखे सो तू है जाने इतना बेहतरी सार नानक भगता भुख सलाहन सचनाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की भेड़ है पई कुम्हार कड़ भांडे इटा किया।

हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपुए खार कूड़ कूड़े नेहु लगा विसरया करतार किसना।

सच का प्रजाने जारी दे सचा होए कूड़ की माल उतरे तन करे हछत होए सच ता प्रजाने जा सच तेरे प्यार नाम सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार।

किछ पुन दान करे। सच तां बजाने जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु न पुछ कै बैरह करे निवास। सच सवना होए दारू पाप कडे होए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल लै।

करें सिंगार ऊंचे को कहवा दागा वह जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार जतिस रावे जुक न जाने छड़ वह करवा सब को पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो लिया जा।

0: जास कुताम न होई, तू करता करना मैं ना ही जा हुकरी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं चूर शब्दं शुद्ध शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं।

निरंजन करहे लहा, सतगुर दयाल हर नाम दिड़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कवि कल ठक।

मुख देख गर्व सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पवन की, वंचित सिदको विद मिलायो। पूर्ण पो मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दें दिसतायो। गोबिंदवाल गोबिंद पुरी सम, जलहन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखण को सो।

0: जिस देख चरण अगन हरे ओ निसबासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पांडर्यो पण दास वास जगत गुरु की पारस पेट परस करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
1: तू सतगुरु चौं जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिलो अगम निगम उदरण जरा जमे अरो गुर अमरदास थिर थप्पयो परगामी तारण तरन अग अंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण।
2: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोक कहत माज सोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी सबद चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईश्वम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
3: राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरेकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरयो हर नक्ष हरयो नख विदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौंता है जियो सत साच श्रीनिवास

0: अपदाते राखिया गनका पड़ पुरे तहकाज श्री सतगुर सो पर सन कल युग होए राखो दास पाठ की लाज।
1: जब लो नहीं पाखल लार उदय तब लो पर जब लो नहीं पाखल लार उदय तब लो पमते फिरते बोतायो कल कोर समुंदर में बूढ़े थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार ये है मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो चिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन कर बनायो।
2: अंत न पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी फुन भेद बिरंच बेचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी।
3: जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा

0: सोठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सत गुर शब्द सवारयो।
1: पवजर सायर सेठ नाम हरि का बोहिथा तुम सतगुर संग देत हर हर नाम जाग उदरयो।
2: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो।

अहनिस सहज स्वभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफतख सम्मदि।

छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे।